0: बसंत को माया लुहावा चलता, 16-17 को उमेर मां जोबन को लहर चलता, कसे कसे ले तीतो मीठो ब्याधरु तो दिए के होलन है ना। हाँ ती आधरु नहीं हुन कुसुमे रुमान छादायो
1: ताकाने सामिचिते कुछ में।